अजुचैत कर तू जिन्हें जोगा ने तो दूरों मुंडा मुझे तर्ज के तो भी थी दुगो कोर्गु एक तो दे प्रेसिडेंट को जो कंसेल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल बा एनवायरनमेंटल एक डॉक्टर अमादू बोडू मामत और तक न्यानांग जो कम के जियो दोबाल दिगे वोल नीले तागने तो ना इंगा एक तो दे बस जो बाकुला मारे एक तो बे मेबे दिगे अल्जीरी एक मामत बुखारी क्या करा दे गना दिगे बो नीले तो बे अरे गना लेते ने लेंदा पतर गो जी दो ने ग्रीजी गो जी दो अकुला गे गे तेल गे ने जी सी गोई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिम अरे एक तो प्रेसिडेंट का कौंसिल इकोनॉमिक अल्जीरी ने एक मामत बुखारी इंटेसे गोसो ने कम कर जगे दे दा गो जी दो संग रे जगे का दा गो इतने बारे डिजिटलाइजेशन के तो बल जितने के ओ तो न्यूमेरिक ने